कहानी ये थी द प्लैनेट्स, और इसके अंदर जो आपने साउंड ट्रैक या सुना या जो ऑर्केस्ट्रा सुना वो था कंडक्टेड बाय जुबिन मेहता, हु हैज वन 5 ग्रैमी अवार्ड्स. Zubin Mehta was born in 1936 in Bombay, which is currently known as Mumbai, and received his first musical education under his father's, Mehul Mehta's, guidance, who was a noted concert violinist and the founder of the Bombay Symphony Orchestra. एक अलग दुनिया जो ग्रहों की बात कर रहे थे हम थ्रू जुबिन मेहताज ऑर्केस्ट्रल जर्नी, अब हम जो नेक्स्ट कॉम्पोजिशन सुनेंगे वो है पंडित विश्वमोहन भट्ट की, जो है भैरवी फ्यूजन, एक म्यूजिक फ्यूजन आप सुनेंगे मोहन वीणा में उनके और सौरभ भट्ट के जरिए. आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है ACT DC.

मनमोहन भट्ट ने 1993 यानी 1993 में ग्रैमी अवार्ड जीता बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए, जिसका टाइटल था अ मीटिंग बाय द रिवर। इसके अलावा उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। उस्ताद जाकिर हुसैन इज एन इंडियन तबला प्लेयर, म्यूजिकल प्रोड्यूसर, फिल्म एक्टर एंड कंपोजर, एंड ही वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी एंड वॉज टूरिंग बाय द एज ऑफ 12। ही वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स इन 1970, बिगिनिंग हिज इंटरनेशनल करियर विच इंक्लूड्स मोर देन 150 कॉन्सर्ट डेट्स अ ईयर। In 1973, he appeared on George Harrison's Living in the Material World album. A prolific composer, he has received widespread recognition. और अगर आप इंडिया में रहे हैं, you know, 70s, 80s में, तो आपको एक ad जरूर याद होगी जिसमें उनको, you know, as a brand ambassador use किया गया था एक, you know, tea company के लिए, जिसमें उनका title था वाह उस्ताद वाह। अरे हुजूर, वाह उस्ताद नहीं, वाह कहिए। जाकिर हुसैन साहब ने दो बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, 1991 में और 2008 में। तो आइए चलिए सुनते हैं उनकी एक कॉम्पोजिशन जो उन्होंने प्रिपेयर की है, जिसका टाइटल है द फाइव एलिमेंट्स। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीडी देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर।

जैसे कि मैंने बताया कि आज का एपिसोड डेडिकेटेड है ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट जिनकी इंडियन हेरिटेज है या दे वर बॉर्न इन इंडिया। तो ग्रैमी अवार्ड्स जो 2022 हुआ उसके अंदर दो इंडियन आर्टिस्ट को ग्रैमी से नवाजा गया, जिसमें से एक है रिकी केज। उनको ये अवार्ड दूसरी बार मिला। जो पहली बार उनको ये अवार्ड मिला था वो था 2015 में, और इस बार जो उनको मिला है वो है डिवाइन टाइड्स, एक एल्बम जो उन्होंने बनाई है स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ, जो स्टिंग बैंड में एक बहुत ही नोन ड्रमर माने जाते हैं। ही इज ऑल्सो अ 5-time ग्रैमी अवार्ड विनर, ग्रैमी अवार्ड विनर एंड US बिलबोर्ड के नंबर वन आर्टिस्ट, GQ के हीरो 2020। रिकी केज इज एन इंटरनेशनली रिनाउंड इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड एनवायरमेंटलिस्ट। उनकी कॉम्पोजिशन अगर आप सुनेंगे तो उसमें अर्थ, वाटर, रिवर से ही इंस्पायर बहुत सारी कॉम्पोजिशन आपको सुनने को मिलेगी। ही हैज परफॉर्म्ड एट प्रेस्टिजियस वेन्यूज इन ओवर 30 कंट्रीज, इंक्लूडिंग एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स इन न्यूयॉर्क एंड जिनेवा। रिकी हैज वन मोर देन 100 म्यूजिक अवार्ड्स इन ओवर 20 कंट्रीज। क्या आपको मालूम है कि केज इज क्रेडिटेड विद 3,500 प्लेसमेंट्स फॉर रेडियो एंड टेलीविजन जिंगल्स, और उन्होंने 2011 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसकी ओपनिंग सेरेमनी का म्यूजिक कंपोज किया था। चलिए आइए सुनते हैं कुछ कॉम्पोजिशंस रिकी केज के पिटारे से। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीडी देसी का ग्रैमी अवार्ड स्पेशल।

लुकिंग केज के अलावा 2015 में ही बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम के लिए नीला वासवानी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके अलावा 2022 में बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम के लिए फालू या फाल्गुनी शाह को अवार्ड किया गया। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं तो डू विजिट देयर वेबसाइट या आप ग्रैमीज की वेबसाइट पे जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपने कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंट म्यूजिक सुना अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर म्यूजिक मैं बजाता हूं फ्रॉम मल्टीलिंगुअल यू नो इंडियन कम्युनिटीज। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और बहुत सारी और रेंडिशंस आपने सुनी आज के शो में। तो जो लास्ट आर्टिस्ट जिसका म्यूजिक मैं आपके लिए प्ले करूंगा टुवर्ड द एंड ऑफ दिस शो इज AR रहमान। कौन नहीं जानता कि 2008 में स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उनको 2 ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन मैं आज उनकी ग्रैमी अवार्ड विनिंग फिल्म से गाना नहीं बजाऊंगा आपके लिए, मैं बजाऊंगा एक ऐसी फिल्म का गाना जो उनके इनिशियल करियर से था। और ये गाने को मैंने मिक्स एंड मैच किया है तेलुगु और हिंदी वर्जन को पुट टुगेदर। तो आइए सुनते हैं ये गाना जो मेरे बचपन की याद कराता है, शायद आपको भी कुछ याद कराए। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ और ये है ACT देसी। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।